0: पहला ही जो टुट चुकी है कि करिए रिजा बुनिया तो मेरी दुनिया किसी होर दी दुनिया मैं की लेना दुनिया तो
1: एक कुड़ी सतबीर औजला दी आवाज़ च कमिंग अप दिस इज हरमन एंड द